0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
10: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: R Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर जेके टायर।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी। Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
9: Hey, Kia. Navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
10: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
11: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
12: Kia. Movement that inspires.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स। Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
2: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
9: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
10: व्हाट यू आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
11: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: अभी तक ब्रिक्स से हमें इंडिया को क्या फायदा मिला? बल्कि हमारा जो पार्टिसिपेटरी अमाउंट है ब्रिक्स ब्लैक पड़ा हुआ है, 2 बिलियन पहले देने की बात कही थी, दिया था शायद 10 बिलियन और देने की बात, कुल मिला के टोटल, तो उससे क्या हमें लाभ क्या मिला?
1: 12 और 13 में भारत के बारे में ब्रिक्स को लेकर क्या लिखा जाता था? कोई समाचार पत्र यह लिखता था कि इंडिया इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ ब्रिक्स, कोई कहता था इंडिया हैज बिकम इनसिग्निफिकेंट इन द ब्रिक्स। भारत विश्व के साथ एक सकारात्मक प्रभावी विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उस अतीत के काले अध्याय जिसमें ब्रिक्स में भारत को इनसिग्निफिकेंट, वीकेस्ट और अवांछित सदस्य के रूप में माना जाता था, उससे बहुत आगे की यात्रा कर उसे विस्मृत करके एक नए स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा।
2: आज ब्रिक्स समिट को लेकर कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल जिस प्रकार के एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें आईना दिखाने की आवश्यकता है। आप चिंता करिए, 2011-12 में जहां ब्रिक्स में भारतवर्ष खोता हुआ नजर आ रहा था, आज सभी राष्ट्र, ब्रिक्स के सभी राष्ट्राध्यक्ष भारतवर्ष में है। टुडे इंडिया इज सेलिब्रेटिंग ब्रिक्स एज नेवर बिफोर। टुडे इंडिया हैज फाउंड इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल अरीना एज नेवर बिफोर, एंड येट we have some politicians, we have some opposition people who are not able to digest this. आज कुछ लोगों को, कुछ opposition के सदस्यों को, कांग्रेस पार्टी को अपच हो रहा है क्योंकि भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है।
3: Anyone who understands diplomacy would see great value in the BRICS summit. I mean, you have heads of government and heads of state of some of the most important countries in the world coming here to attend a multilateral event. To have one-on-one with our Prime Minister Narendra Modi ji, obviously that this is going to be something that the world is watching, and there is benefit in it in terms of global governance and security implications. One is surprised at how the Congress party found fault with it, and particularly Mr. Chidambaram.
4: Remember, it was on Thursday, which is yesterday, that P. Chidambaram questioned the credibility of the BRICS summit.
5: I don't know how many presidents and how many prime ministers are coming. I don't think the last 2 or 3 BRICS summits have resulted in tangible benefits or tangible results. In fact, we are part of BRICS, we are part of SCO, we are part of G20, we are part of Quad. What benefits we are getting out of that, I can't see. In the last 2 or 3 summits, I didn't see any benefits.
4: And that's all we have time for, but our rolling coverage on the BRICS summit continues with Shiv Arur, Vishnu Shom, Aditya Rajkol and Manogya Lohiwal in a moment from now. Thanks for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears faster, bolder, more restless. It doesn't stop, neither do we. NDTV, when it really matters.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
7: दिस इज़न्ट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज़ अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
8: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज़ अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
7: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं। ग्रासरूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। फ्रेंड्स, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज का आधार बनाया है। रेजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड और रिलायबल बनाया है। इसी रेजिलियंस का परिणाम है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड, आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको ब्रिक्स भारत इनोवेट एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप एआई, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज पर काम कर रहे हैं और डिफेंस और स्पेस में भी नए फ्रंटियर्स पार कर रहे हैं। अब हमें ब्रिक्स के माध्यम से भी इन वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, भारत इनोवेशन स्टोरी की एक और विशेषता है इनोवेशन एट पॉपुलेशन स्केल। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के

0: 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक ओपन इकोसिस्टम दिया है। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के इनोवेटर्स भी इस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने देशों के लिए नए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है। स्टार्टअप्स और एसएमईज को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहले की है। इन सभी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं और हमारे देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है। ब्रिक्स विमेन्स विंग्स बिजनेस अलायंस भी हमारे विजन का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेनर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी को लीड करें। हमें बहुत खुशी है कि भारत में आयोजित इस अलायंस की मीटिंग में करीब 200 विमेन बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, आज जब ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या हम हर वर्ष 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं? इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, एक्सीलेंसीज, Distinguished leaders, ladies and gentlemen, with that we've come to the conclusion of this leaders' session. Thank you all for joining us today. May I request all our distinguished guests to kindly remain seated until the esteemed members of the leadership on the dais have exited the hall.
2: That was the leaders' session.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम क्या आया, अब उनको वहाँ भेजा गया। और वहाँ रंधावा जो हैं पंजाब के, वो राजस्थान के प्रभारी थे, तो उनका जो व्यवहार राजस्थान के अंदर रहा था सचिन पायलट के साथ, अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से वो काम कर रहे थे, अब सचिन पायलट उन्हीं के राज्य में प्रभारी बनकर गए हैं जहाँ से रंधावा आते हैं। तो अब सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे रंधावा चन्नी,
1: पर उनके रिश्ते कैसे हैं, ये सारे जो डिफरेंट कैंप्स हैं उनके साथ?
0: नहीं ठीक है, देखिए सचिन पायलट
1: बहुत सुलह करा पाएंगे, वो नहीं करा पाएंगे,
0: नहीं करा लेंगे सचिन पायलट। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को भेजने के पहले चन्नी से बात हुई थी, चन्नी से बात हुई, उसके बाद सचिन पायलट को भेजा गया। और चन्नी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है सचिन पायलट के लिए कि वेलकम करने के लिए, बता रहा है कि चन्नी उससे बहुत खुश है आने से। भूपेश बघेल वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि भूपेश बघेल पंजाब के अंदर कंटिन्यू करें, और मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान को लगा हुआ कि अगर भूपेश बघेल रहेंगे तो चुनाव बहुत बुरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब होगा,
1: क्योंकि यहाँ पे सच में एक ऑप्शन है कांग्रेस का जो उनके जीतने की चांसेस हैं। लड़ाई खत्म हो गई या इन कांग्रेस नेवर से नेवर,
2: लड़ाई
1: यू नेवर नो व्हेन द फैक्शनलिज्म इज गोना कम,
2: कभी होती नहीं है नेताओं में। ये कह सकते हैं कि फिलहाल जैसे सीज फायर वाली स्थिति बन गई है सचिन के जाने से, उसका रीजन है कि सचिन की जो छवि, जो भी भूपेन ने भी कहा कि भूपेश बघेल अलाइन हो गए थे एक सेक्शन के साथ, और यही प्रॉब्लम हो गई थी पिछले चुनाव में जब हरीश रावत थे उनके साथ भी यही हो गया था। ये दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर जो है ये अलाइन हो गए थे। सचिन के साथ क्या है कि सचिन एक तो राजस्थान से हैं, मतलब यूपी से हैं ओरिजिनली, बट राजस्थान में काम करा, तो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर्स मिलते हैं, वो राजस्थान की तासीर को बेहतर समझते हैं, सॉरी पंजाब की तासीर को बेहतर समझते हैं भूपेश बघेल की तुलना में। फिर चूंकि राजेश पायलट के बेटे हैं, उनकी एक लेगेसी है, तो पंजाब के कई सारे लीडर्स एक ज़माने में राजेश पायलट से ओबलाइज भी रहे हैं, राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो रिश्ता भी सचिन का है। तो सचिन के साथ जो एक पर्सनल टच है लीडर्स का, वो भूपेश बघेल के साथ नहीं था। तो ये सब चीज़ों को देख के, और यंग है, न्यूट्रल है, और सचिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को करीब लाने में ज़्यादा कामयाब होंगे, बेहतर। अब
1: और एक कोइंसिडेंस भी है दैट अब राजस्थान का एक फेस ऑफ होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि सतीश पुनिया है बीजेपी के प्रभारी और सचिन पायलट राजस्थान से हैं,
2: जाट और एक गुजर,
1: जाट वर्सेस गुजर होने वाला है।
0: 2022 में भी दोनों राजस्थान से प्रभारी थे, हरीश चौधरी पहले ये थे अपने, जिसका आपने नाम लिया अभी, हरीश रावत थे, उसके बाद उनके हरीश चौधरी बने राजस्थान से थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से 2022 में थे। तो 2022 में भी दोनों राजस्थान के जो नेता थे वो पंजाब के प्रभारी रहे।
1: इंटरेस्टिंग, बिफोर वी pop the champagne and think that all is going to be well within the Congress, let me just quickly tell our viewers that just when they were giving conciliatory statements, you had a delegation of the Congress go and meet the governor about the suicide of a man, of a Dalit man, Gulzar. And in that delegation that met the governor, there was only Charanjit Singh Channi, Sukhjinder Singh Randhava, and none from the warring camp were over there. That meeting happened yesterday. So if the Congress is experiencing this burst of energy of late in Punjab, one party that has been at the receiving end, and an unfortunate receiving end, is the ruling Aam Aadmi Party. Now, what happened? It all started with the suicide by a Dalit laborer in the Sangrur district of Punjab. This man, Gulzar, had questioned Punjab's finance minister Harpal Cheema about the drug problem in the state during a public program. He basically went there with a black flag. Gulzar then said that his son is a victim of chitta, nasha, the drug problem that exists. And in this public meeting in front of Harpal Cheema, Gulzar said that it's still being sold openly and my son is an addict. Now, allegedly after this, he faced political pressure. He was picked up by the sarpanch. He was asked to issue an apology. And he says that he was tortured to an extent that he consumed poison. He had these sulfas tablets. A few days later, he died, but not before he left this dying declaration.
3: ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ ਤੋਦੇ ਤੋਂ
4: ਹਾਂ ਜੀ
3: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ
4: ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ
3: ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
4: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਪਾਸ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ
3: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ
4: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ।
1: Now, to make matters worse, Gulzar's family says that their father's body was forcibly cremated under police protection, and this has given fresh impetus to the attack on the Bhagwant Mann government by both the Congress and the BJP.
5: ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ

0: ਦਬਕੇ ਮਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FM 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
1: Akhilesh, this has all the ingredients that can prove potent against the Aam Aadmi Party.
2: Absolutely.
1: It's a Dalit laborer, it's in the Chief Minister's own constituency, drugs are involved. What do you see will happen? Will Harpal Cheema have to go?
2: Well, it's a serious indictment of the Aam Aadmi Party government, because remember in 2022 when they came to power, that time the famous movie Urda Punjab, and then this drugs problem and Aam Aadmi Party's promises that, you know, they will completely remove it from the roots. The drug problem will be completely uprooted from Punjab. That was the election promise made by the Aam Aadmi Party. But after 5 years, what has happened? A person commits suicide because his son is taking drugs, and that too in the constituency of the Chief Minister.
1: And he takes the name of the minister.
2: Finance Minister, and take the name of that. And also, because what has happened is that he is Dalit also.
1: Yeah.
2: So all the factors, you know, they are going against Aam Aadmi Party. And remember now, not only the Congress Party, but also the BJP. BJP is going to take out a big yatra against the drugs. BJP President Nitin Naveen will launch this yatra. Home Minister Amit Shah will also be part of that yatra. So BJP is going to make it a big issue. And that will actually hurt the Aam Aadmi Party in the upcoming assembly elections.
1: But who do you see gaining more from this, Bhupen? Is it going to be the BJP or the Congress? Because the Congress is front-footing it, saying that this is a Dalit labourer. You know, you had delegations of the Congress going and meeting the governor. BJP yesterday tried to go to this village, but they said they were stopped. Who will gain more from
3: that? That's why I think Sachin Pilot's appointment at this stage becomes that much critical. Because this is an opportunity. This is a godsend opportunity, I would say, no pun intended, to the Congress Party. The political semantics of Gulzar Singh's death are such that it can shift hugely the very significant and critical Dalit vote base in the state of Punjab. We all have seen how Rahul Gandhi consistently in different parts of the country has been trying to position himself as the harbinger and the savior of Dalits in the state. The Aam Aadmi Party, I'm in agreement with Akhilesh, is clearly on the back foot in the state of Punjab. They have all kinds of problems. Arvind Kejriwal, I think a few weeks back, was openly celebrating the launch of what they called Pila Punjab, you know, which was a bulldozer, which was
1: because they carried out the entire Yudh Nasha Virudh,
3: Yudh
1: and
3: Nasha
1: so
3: Virudh.
1: Many of these buildings were brought down
3: It was a critical part of their election campaign at the time of the 2022 Punjab Assembly elections. Clearly, they have not succeeded in dealing with
1: it. So then why aren't they dismissing Harpal Cheema? Why are they digging in their heels?
3: Well, if anything, they have
1: here a man has taken his name in his dying declaration.
3: They have brought Mr. Cheema in their highest decision-making body.
1: In the PSC.
3: Which is also a messaging which is going. Now, you know, I mean, you could well argue that maybe Mr. Kejriwal is taking a leaf from the Prime Minister's book, that it's not that the BJP also, you know, gets rid of a leader just because some controversy has happened. Mr. Kejriwal at this stage has a very clear and I would say a reduced playbook to play with. Harpal Cheema in that sense plays a very, very critical role. He's a state finance minister. He's, well, clearly blessed with the ability to bring in resources within the party as well. To let go of him or to remove him would have ended up, you know, exposing the Aam Aadmi Party a little more at this stage. And I don't think Kejriwal wants to take that chance at this stage.
1: In fact, if anything, they have gone on the offensive. Because now, Sameer Ji, yahan par parivar ne bola hai ki, aur isko Congress Hathras se compare kar rahi.
3: Yeah.
1: Dekhiye, and the optics are the same. Because wahan pe bhi ek Dalit bachchi thi, yahan pe ek Dalit laborer hai. Aapne le liya aur wo tasveerein dikhaiye. You show those pictures where you've got an entire police cordon around where that pyre is being lit. So, इससे मतलब स्ट्रैटेजी क्या है आम आदमी पार्टी की इसमें?
4: नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है चुनाव के पहले इस तरीके से घटना और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगना। देखिए 2022 के चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था ना कि भाई कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल इतने समय शासन किया पंजाब के अंदर और ड्रग्स की समस्या इनके इसमें बड़ी। मजीठिया पर जिस तरीके से आरोप लगाया था कि भाई ड्रग्स की डील करते हैं लेकर अकाली दल के नेता के ऊपर, और केजरीवाल ने कहा था हम आएंगे तो हम ड्रग्स फ्री पंजाब को बनाने वाले हैं, पांच साल बाद आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, आपको इतना प्रचंड मैंडेट मिला, 92 सीट्स आप उसमें जीत जाते हो, उसके बाद पांच साल बाद भी आप ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि ड्रग्स को लेकर आपने काम क्या काम किया। और जब अब ये कहा जाता है कि मतलब जो राघव चड्ढा ने भी कहा कि राशन की दुकानों पर ड्रग्स की बातें हो रही है, स्कूल कॉलेजेस के प्रमाइसिस के आसपास ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा इस मामले को लेकर आपने किया गया? आपको जनता के बीच चुनाव में इस बात को लेकर जाना होगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, कहेगी कि भाई पंजाब की जनता से कहेगी आपने कांग्रेस को इतने लंबे समय देखा, आपने आम आदमी पार्टी को पूरा इतना प्रचंड बहुमत देखा, एक बार अब हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम इस मामले को देखना चाहते हैं।
1: दिस इज एन इशू दैट आम आदमी पार्टी इज वेरी टची अबाउट। अ फ्यू डेज अगो हरभजन सिंह हैड ट्वीटेड दैट वीडियो ऑफ अ मैन who was out of his senses and then the Aam Aadmi yes. party came back and said ki bhai ye Rajasthan ka video hai, aap isko misrepresent kar rahe
4: hain. Abhi Akhilesh jo bata rahe the ki dress ko lekar BJP yatra nikalne wali, jo Pathankot se 18th September se shuru hokar 30 September tak karne wali hai, Nitin Naveen us yatra ko nikalenge, to mujhe lagta hai ki Bharatiya Janata Party bhi is pe dress ke pe badhegi. Aur jaise Amit Shah ji ne kaha tha ki bhai desh ko naxalwad se mukt kiya hai, ab nasha mukt karna hai, to us slogan ko lekar mujhe lagta hai Punjab mein Bharatiya Janata Party jayegi. Congress ke samne samasya ye ki bhai matlab Congress koshish karegi ki wo दलित जो मर गया है तो उसकी सिंपैथी ले, लेकिन आपका ही दलित लीडर आपसे नाराज है चन्नी, वो भी तो एक दलित लीडर है जो आपकी पार्टी से नाराज चल रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपको ये है कि आप चन्नी को बचा के रखो तब तक, क्या चन्नी रहने वाले तब तक?
1: But to be fair, at least on this issue, Mr. Channi is speaking in the language of the Congress party.
5: But what he is saying is very important.
6: चन्नी तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? He is making a very important point. So not only about him, but also about Captain Aminder Singh.
4: बिल्कुल.
6: Because there's a lot of talk ki whether he is going to come back to Congress or not.
1: Exactly. And I want to come to that. But you know, what does this do to the position of the Chief Minister? That is going to be interesting because when we are talking about Captain Amrinder Singh, that is the other buzz. Captain Amrinder Singh has been now with the BJP. He formed a different party, then he merged his party into the BJP. I think what, for around 2 years? So he's now merged with the BJP. But when the Prime Minister coined the phrase of Dimagi Naxal, Amrinder Singh wrote an op-ed in a newspaper where he said that who exactly is a Dimagi Naxal? That definition needs to be made very clear, otherwise you're just going to silence dissent. Now, what made things even more suspicious is an AMA, Ask Me Anything, that Rahul Gandhi did just a couple of months ago, and in that he spoke of Uncle Amrinder. I want you to listen in to what Captain Saab has said about the Congress and Rahul Gandhi has said about Captain Uncle in just the last few months.
7: Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him, he's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder.
8: Rahul ne mere nan ke manan kita. But ono ve ono edda jata si jata main jaanda usno. But bacha. So naturally all the feelings are ready in here.
1: बताइए विनोद जी, अंकल अमरिंदर आ रहे हैं वापस? हेलो तो बोल ही दिया राहुल जी ने।
5: अंकल इसमें अंकल का मतलब अंकल फूफा तो नहीं है?
1: आई हैव नो आईडिया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, जब वो आएंगे तो पूछेंगे, अगले एमए में पूछेगा उनसे।
9: फूफा वो बीजेपी के लिए हो जाएंगे ना?
1: फिर वो बीजेपी से नाराज फूफा होंगे।
9: हां, नाराज फूफा होंगे। एक्चुअली देखिए, अमरिंदर सिंह की जो रिलेशनशिप गांधी फैमिली से रही है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड ही वॉज, ओनली लीडर इन द कांग्रेस पार्टी हु कॉल्ड सोनिया बाई हर फर्स्ट नेम, सोनिया, not Sonia ji, not Sonia Gandhi, because his relationship with Rajiv Gandhi was very close, very close. So Amrinder Singh, aur jab Amrinder Singh ka jab ko hataya gaya na, to last jab Sonia Gandhi se unhone baat ki aur Sonia ne kaha ki now Rahul will decide, Rahul se baat kariye, uske baad hi wo naraaz ho ke gaye aur phir party banayi upar wo. To ab agar dobara wo aur BJP mein unko koi अहमियत मिल नहीं रही है, क्योंकि जो बीजेपी ने जिन लोगों को अब रविंदर सिंह बिट्टू,
1: और वो कुछ फायदा भी नहीं हुआ है,
9: फायदा भी नहीं हुआ,
1: ढिल्लो हुआ नहीं है ना, लोग
9: सारे लोग रविंदर बिट्टू ढिल्लो सारे कांग्रेस के ही लोग हैं जो इनको बीजेपी ने आगे किया हुआ।
1: इनफैक्ट जब केवल सिंह ढिल्लो को बनाया गया था तो अमरिंदर सिंह सेड कि मेरे को तो पूछा ही नहीं, जबकि वो मेरे राइट हैंड मैन या मेरे से क्लोज हुआ करते थे।
9: और अमरिंदर सिंह ही नहीं, सुनील झाकड़ भी इस समय आइसोलेटेड है। अगर अमरिंदर सिंह जाते हैं तो क्या सुनील झाकड़ भी चले जाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक साथ है।
1: अरे सर, आपने बोला ना कि बीजेपी में किसको अहमियत मिल रही है, हु इज नाउ गेटिंग अटेंशन, सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ समबडी हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, ही हैज बीन सीन इन द कंपनी ऑफ तरुण चुग, हैज बीन अटेंडिंग मीटिंग्स इन दिल्ली, ही हैड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से, आई वांट टू प्ले आउट व्हाट राघव चड्ढा सेड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द आम आदमी पार्टी, लिसन।
10: मेरा सवाल है और मेरे वोट का सवाल है, आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत हो गई, उन्हें रात को सपने में मैं भूत बनकर आता हूँ, वो दिन रात राघव चड्ढा राघव चड्ढा राघव चड्ढा राघव चड्ढा करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की हालत उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जिसे बॉयफ्रेंड डंप कर आगे निकल गया है, मूव ऑन कर गया है जिंदगी में, लेकिन आज वो अभी भी मेरे इश्क में मेरे प्यार में पागल हैं।
1: समीर जी क्या चल रहा है राघव चड्ढा के साथ?
4: देखिए अमरिंदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अमरिंदर के साथ गठबंधन किया था 2022 के चुनाव में, तो अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि मैं आपके साथ गठबंधन करूंगा तो कम से कम 10 सीटें मैं जीतूंगा। 27 सीटें अमरिंदर चुनाव लड़ते और 26 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। टोटल 85,000 वोट अमरिंदर को मिले थे, 0.55% वोट मिले थे। अमरिंदर खुद पटियाला शहरी सीट से चुनाव हार गए थे, सिर्फ 26,000 वोट अमरिंदर को मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अमरिंदर को लाके कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। फिर उन्होंने पार्टी मर्ज की, उनको लगा कि पार्टी शायद राज्यसभा भेजेगी, उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी, जब केवल सिंह कुछ जिम्मेदारी देगी। लोकसभा में उनकी वाइफ थर्ड सीट पर पटियाला में लड़ी, तो थर्ड नंबर पर उनकी वाइफ चुनाव पर चली गई। तो पार्टी को लगा कि भाई अमरिंदर के पास अब मतलब कोई बड़ा ग्राउंड बचा नहीं इसके अंदर। तो उसके बाद जब केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया तो अमरिंदर सिंह इस बात से नाराज थे कि मुझसे पूछा भी नहीं गया किसको अध्यक्ष बनाना, डायरेक्ट उनको बना दिया गया। कहा जा रहा है कि बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ जो अभी अध्यक्ष थे केवल सिंह ढिल्लों के पहले, वो भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, हो सकता है कि वो भी वापस कांग्रेस में लौट कर आए, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब अमरिंदर अब 84-85 के हो गए, अब उनको लग रहा है कि भाई अब बीजेपी में कुछ मिलना नहीं है, कांग्रेस में जाऊंगा तो कम से कम ये है कि लोकसभा में वाइफ चुनाव लड़के जीत जाएगी या कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि अमरिंदर का जाना चाहता है तो चले जाए।
9: सचिन की रिलेशनशिप भी अमरिंदर से वही है जो राहुल गांधी की अंकल वाली।
1: अच्छा,
9: राजेश पायलट एंड अमरिंदर सिंह दे वर क्लोज फ्रेंड्स, तो सचिन
1: तो वो कॉन्डुइट रहेंगे अंकल को वापस घर वापसी करने के लिए।
9: वो भी एक भूमिका
1: है। बट राघव चड्ढा को तो बताइए, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरी अपनी नस काटने के लिए तैयार है, मेरे प्यार में पागल हो रही है अखिलेश जी।
6: ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी चिंता करते हैं कि राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं, फोन भी आते हैं पूछते भी हैं कि राघव चड्ढा को कोई भूमिका मिल रही है पार्टी में, नहीं मिल रही, आते हैं पूछते हैं लोग।
1: अच्छा,
6: अब उसमें दिक्कत ये है कि क्या बताएं। अब अभी तक तो फिलहाल तो बीजेपी ने कोई स्पष्ट किया नहीं, संदीप पाठक को जरूर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, राघव चड्ढा को मुझे लगता है कि संभाल के रखा हुआ है, लास्ट मोमेंट पे कुछ कार्ड निकालेंगे कुछ करेंगे। देखिए राघव चड्ढा आप जानते हैं कि पंजाब के प्रभारी, संदीप पाठक ने इन दोनों ने मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो ये है घर के भेदी, तो घर के भेदी लंका ढाए ये कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को इसी के लिए संभाल के रखा है बीजेपी ने, आखिरी मौके पे कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल जरूर करेगी।
1: ओके,
3: जस्ट ऑन राघव चड्ढा, सिंस यू सी पंजाब में ना पद्मजा दिस बिजनेस ऑफ गर्लफ्रेंड एंड स्कॉच एंड बटर चिकन इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पंजाबी पॉलिटिक्स। बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ लास्ट असेंबली इलेक्शन इन पंजाब, कुमार विश्वास नोटेड पोएट had made a very serious allegation against the Aam Aadmi Party.
9: Against the Kejriwal.
3: Against Mr. Kejriwal, that Mr. Kejriwal was allegedly on the same side as terrorists and you know, Canadians who were supporting Khalistani movement in Punjab. Now, in 2022, Raghav Chadha was the critical force, so to say, for the Aam Aadmi Party in the state of Punjab. I would be very eager at this stage now that Raghav is on the other side. Will we get to the bottom of the allegation which was made by Kumar Vishwas in 2022?
1: Yeah.
3: Will Raghav Chadha now come clean and say that yes, I mean if any such meeting happened, then sure Raghav Chadha would have known. Let's see whether Raghav
1: Chadha. That's a very important point like because such things should not just be made fodder for elections. If such charges are made, one should get to the bottom of it and name and shame those people and in fact arrest them. Since we are on the issue of Punjab, some respite that the Aam Aadmi Party government got was from the latest activists on the block. CJP's Saurav Das was in Punjab yesterday. He didn't tell anyone. Samir ji, kisi ne koi pata tha ki aise ye auchak nirikshan karne wale hain wahan pe? Wo bakayda gaye. He went to some schools of eminence and then he declared that he was quite impressed by it also and that he also met the education minister. Education minister unse milne ko bhi tayar ho gaye.
4: Saurav Das ko Punjab mein sare school mein Ram Rajya nazar aaya ki sab kuch bahut behtar hai, sab kuch koi kharab
1: nahi. Lekin unhone kaha ki
4: Jharkhand ko lekar bhi unhone kaha
1: sirf hum BJP rajyon mein jate hain hamari pitai hoti hai, yahan pe people come and
4: meet. Rajasthan ka sirf Rajasthan mein hua, baki kahin pitai nahi hua. Maharashtra bhi gaye the BJP rule, wahan koi aisa misbehave nahi hua. Sirf Rajasthan ka zikr kar rahe honge, shayad Rajasthan mein jis tarah se unke saath misbehave hua tha, lekin wo Jharkhand ka bhi zikr kar rahe the ki Jharkhand mein gaye wahan par acche school hai, Punjab mein gaye wahan ke bahut acche school hai. अब सौरव दास, अभिजीत दिपके और इनके बारे का बैकग्राउंड तो बताने की बहुत

0: रहने का
1: द एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एवरी एंड बाय द वे ही हैड टैग्ड ओनली हरजोत बेंस ही हैडन टैग्ड अरविंद केजरीवाल ही हैडन टैग्ड मनीष सिसोदिया बट एवरीवन सो दैट्स अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट
0: नहीं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तो है लेकिन द रिलेशनशिप बिटवीन सीजेपी एंड आम आदमी पार्टी इज वेल नोन
1: इज इट
0: भाई वो तो पुराने एक्टिविस्ट हैं आम आदमी पार्टी के
1: बट वो कहते हैं हमने तो छोड़ दिया अब हम इंडिपेंडेंट हैं
0: तो मायके से प्रेम तो रहता है ना ससुराल जाने के बाद भी तो इसलिए खाली फूफा की बात नहीं होगी मायके की बात भी होगी कि भाई जिस पार्टी से आप अपने अलग पार्टी बनाए दूसरी पार्टी तो नहीं गए आप राघव चड्ढा को का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है वो खुद ही बता रहे हैं लेकिन यहाँ तो रिश्ता ये है उन्होंने अपना घर बसा लिया सीजेपी बना करके लेकिन कहीं ना कहीं भाई अभिजीत दीप के काम कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ आशुतोष रंका कर चुके हैं सौरभ दास कर चुके हैं तो उनके लिए आम आदमी पार्टी तो उनकी पुरानी पार्टी है ना तो वहां जा करके वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं ठीक है वो
2: पर इसका एक दूसरा आयाम भी है वो ये
0: कह रहा हूँ अगर कर रहे हैं लेकिन वो क्रेडिबिलिटी उनकी कितनी रहेगी
2: हाँ, exactly.
0: अगर ये इंपॉर्टेंट चीज
1: नो एंड बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट द बीजेपी व्हिच इज क्वेश्चनिंग नाउ इवन द कांग्रेस इज सेइंग कि भाई हजार ऐसी लिस्ट है आप हमारे साथ चाहिए हाँ. आपने किसको यू डोंट इन्फॉर्म एनीवन यू डिड नॉट टेल एनीवन यू आर गोइंग टू बी इन पंजाब
3: मनीष तिवारी नाउ लुक एट व्हाट मनीष तिवारी सेड जस्ट लास्ट वीक व्हाइल स्पीकिंग एट अ फंक्शन ही सेड द आइडियोलॉजी ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस इज द सेम नाउ हियर इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर whose name has not figured, you know, in these potential chief presidential candidates in the state of Punjab. Chakkar kya hota hai? That in any state, you know, you go to any state in this country, whether it's UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, you can, as I keep saying, you can look at statistics the way you want to. There are certain schools which will be working, there are certain schools which will not be working. Vinodji is right that CJP, if anybody tells me that CJP is not conjoined with the Aam Aadmi Party, you know, then I'm not going to buy that statement. It's very clear. So whatever Mr. Kejriwal has responded to Saurav Das, if you remember that, why did the CJP delegation actually go to Punjab? Because there was an interaction which was taking place, if I remember correctly, in Maharashtra between Abhijit Deepke and some reporters, where they asked, aap kya sirf BJP rule states mein jayenge? Toh unhone kaha ki, nahin, hum sab states mein jayenge. Hum toh Aam Aadmi Party ki state mein
1: jayenge. Bakaida tweet karke bola hai that we have gone to opposition rule states and look how all the teachers are accompanying Saurav Das and that lady who used to be a lawyer.
4: Yeah, kiske
1: saath kiya? Sab saath mein, wahan pe Madhu Bangarappa jaake Karnataka mein unse mil rahe hain, jo ki education minister hain. Yahan pe idhar ke education
4: minister.
1: लेकिन
0: सोशल ऑडिट किसका होगा जहाँ से कंप्लेंट आएगी स्कूल गड़बड़ है अब आप मान लीजिए गए और बहुत अच्छा स्कूल है आपने देख सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है उससे नहीं बनता जहाँ बच्चे वाकई परेशान हैं
1: करेक्ट
0: जहाँ आप देखेंगे बिजली नहीं है सड़क पे वो टीचर नहीं जा रहे हैं इमारतें नहीं ठीक है वहाँ जाकर सोशल ऑडिट
1: करिए पीपल इन झारखंड पीपल इन कर्नाटका विल बी लुकिंग एट दीज ट्वीट्स एंड दे विल नो व्हाट द रियलिटी इज बट सिंस वी आर टॉकिंग हमने मायके की भी बात कर ली ससुराल की भी बात कर ली फूफा की भी बात कर ली तो अब बुआ की बात करना तो जरूरी है वी हैव टू गो टू द next relation and the very very naraz bua right now in Indian politics is Mayawati. Now Akash Anand, last time when we had spoken, three times he had been thrown out of his chief coordinator post. Then finally over the delay in tweeting, in retweeting his bua's post, finally not only has he been removed from his post, his father-in-law has been made to retire. Now what is this relationship? Akash Anand was believed to be the inheritor of Mayawati's legacy. Now is it going to be his brother, Akhilesh ji? Is Akash Anand out of favor? And is Ishan Anand now, and wo bhi kahin Manchester ya kahin se padh ke aaye hain shayad?
2: Nahin, abhi toh lagi raha hai ki unhi ko shayad promote kar rahi hai, kyunki jis tarah se unka naam bhi liya unhone. Toh, lekin ek bada interesting ye hai ki mujhe kabhi kisi ne kaha hai ki aap 2-3 din rukiye, is story mein bhi kuch aur bhi badi cheeze honi hai, kuch bada dhamaka bhi hoga. Toh mujhe lagta hai ki some big development is going to happen.
1: Like?
2: I don't know what. Because I asked them,
1: क्या ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे
2: वो अखिलेश यादव ने कहा कि आ जाए तो आ जाए स्वागत है
1: उन्होंने ये नहीं कहा रिपोर्टर ने उनसे पूछा वो आएंगे
4: तो ले लेंगे
1: तुम लेके आओगे तो हम ज्वाइन करा लेंगे
0: बट नहीं लेकिन मायावती के ट्वीट में जो आजाद था कि मैंने उनको आजाद कर दिया तो उस आजाद का क्या मतलब
1: इट्स इंटरेस्टिंग आपने मेंशन किया दिखा दीजिए जरा सा वो ट्वीट लेट्स शो यू द ट्वीट दैट मायावती पुट आउट इट्स पॉइंट नंबर 9 शी राइट्स वेरी वेरी लॉन्ग very expressive tweets but point number 9 said that इसलिए पार्टी के लोगों से यही बेहतर लगता है

0: एक्सेट्रा एक्सेट्रा ही सेड। उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री इन ब्रैकेट्स आजाद। चंद्रशेखर आजाद समीर जी,
1: देखिए मुझे मायावती ऐसे मतलब संकेतों में बात नहीं करती, मायावती जो है बहुत स्पष्ट बोलती है, चाहे ट्वीट हो चाहे बात करे। अगर वो ये कह सकती है कि भैया आपने ट्वीट करने में देरी कर दी, चीज़ों को लेकर स्पष्ट कह सकती है, तो वो ऐसे संकेतों में बात नहीं करेगी। अगर मायावती को लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसका कोई गठबंधन हो रहा है या उसके पास जाने की है, तो मायावती सीधे उस बात का जिक्र करती। मायावती संकेतों में
0: कि ब्रैकेट
1: में
0: आया, मतलब पहले एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं उनको मुक्त करती हूं,
2: इसलिए किया है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर के उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती। जो बड़ा नेता होता है, इंदिरा गांधी कभी किसी अपने नेता का नाम नहीं लेती थी, मोदी जी भी ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, मायावती भी नहीं करती, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में आजाद रखा है।
1: और मुझे लगता है
0: क्योंकि उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम बनाया है,
3: वो तो है, वो तो है। बट यू नो पद्मजा, लुक एट इट दिस वे, जस्ट सी व्हाट डज इट टेल यू अबाउट दिस वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड सो ऑफन इन आवर कंट्री ओवर द लास्ट 10 इयर्स, डिनेस्टी, फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स, राइट? अखिलेश यादव इन अ लाइटर वेन जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक वाज पॉइंटिंग आउट दैट हमारी पार्टी क्यों नहीं टूटी, समाजवादी पार्टी, एंड ही सेड हमारी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारे परिवार के कितने लोग हैं सांसद बने हुए हैं। नाउ हियर इज
0: मायावती, क्योंकि सारे सांसद हमारी
3: पार्टी में, बट हियर इज मायावती,
0: हमारे परिवार से, सॉरी,
3: मायावती अ लीडर हु हैज बीन of, you know, multi-term chief minister, full majority government between 2007-2012, if after all these years, Bhenji has not been able to put in place a cogent power transfer or passing the baton structure, then the responsibility completely lies with her. You speak to people in her party at the lowest level, they will tell you that, you know, we have full faith in her. But the point is, we don't know which side she's on. You know, we've forgotten what had happened in the Jaunpur Lok Sabha ticket distribution that was taking place in 2024. She was literally waiting for the BJP to declare its candidate so that she could declare her own candidate. In this kind of an environment, I think Bhenji is losing the last ounce of credibility that she'd had. I, for one, I'm disappointed because, you know, for the longest time, I thought that this would be her last election, when she could have really made a dent for herself. If with this story playing out, the way it's playing out, and to just conclude Akhilesh's point, the way it's playing out, what will happen 2 to 3 days down the line, for all you know, I mean, you know, is Akash going to be back? No. Is Akash going to be in Chandrashekhar Azad's party? Well, perhaps, who knows? Is there going to be some alliance between the BSP and or the BJP and the Congress? The chance of that at this point is no. Mayawati is losing the cards which she's always held closest to her chest to strike the best political
0: deal. And the question is, on under, is this under somebody's pressure? What is the logic? I just want to add one more point, because since we're talking about Uttar Pradesh, there's information with NDTV that close to 1/3 of the sitting MLAs are now going to lose their ticket. That's the information that we have.
2: BJP.
0: So there is in the BJP. So the sitting MLAs of the BJP are at least 30% of them. तो टिकट बटेंगे तो बहुत सारों के टिकट कटेंगे भी उसमें, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। हां समीर जी,
1: मायावती को लेकर जिक्र कर देता हूं कि देखिए मायावती कैसी राजनीति करती है और पार्टी को कितने मतलब बुरी कंडीशन में लेकर चली गई कि आज 36 साल के बाद पार्टी इस स्थिति में आ गई है कि आपका एक एमएलए नहीं है, राज्यसभा में आपका एक सांसद बस जो बचा हुआ अगले मंथ रिटायर हो रहे हैं, रामजी सुमन, लोकसभा में आपका एक सांसद नहीं है, नहीं नहीं समाजवादी पार्टी,
3: समाजवादी पार्टी, रामजी गौतम,
1: रामजी गौतम को भेजा था वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास लोकसभा में भी सांसद नहीं है, प्रदेश विधानसभा में आपका एक सांसद नहीं है, प्रदेश विधायक आपका एक नहीं है, जो विधान परिषद में थे आपके भीमराव अंबेडकर जो थे वो रिटायर हो गए, तो आज अगले महीने के बाद मायावती का किसी भी सदन में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में एक भी मेंबर नहीं रहेगा। पहली बार 36 इयर्स में ऐसा आने वाला है। तो ये पार्टी जो 2007 के इलेक्शन में 206 सीटें जीतती है 30% वोट के साथ, वो आज एक भी एमएलए नहीं और 9 से 10% के वोट पर आ गई है
0: सिंगल डिजिट में
1: पूरी पूरी। और मायावती ने क्या किया 2022 के चुनाव के बाद? न मायावती रैली करती है, न 2024 का चुनाव मायावती ने लड़ा, ना आकाश आनंद को चुनाव लड़ने दिया, ना मायावती इस तैयारी में है कि किसी लोगों को लीडर्स को खड़े करें। जितने मायावती के लीडर्स से बाबर सिंह कुशवाहा हो, नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो, सब लोग पार्टी छोड़कर चले गए।
0: दैट लीव्स द फील्ड वाइड ओपन फॉर पार्टीज लाइक द कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी टू ट्राई एंड वू दिस मैसिव एंड डिसाइसिव दलित वोट। बट आई वांट टू गिव द फाइनल वर्ड टू अखिलेश जी, 1/3 of the sitting BJP MLAs are going to lose their ticket?
4: Yes.
0: Why?
4: Massive. But this is what happening. This is what happening in the other BJP ruled states.
2: Yeah, SOP.
4: When you have.
0: Yeah, but in Uttar Pradesh in particular, is there greater than usual anti-incumbency
4: of
0: against the
4: is.
0: Local MLAs?
4: MLAs. There is a lot of anti-incumbency against the MLAs, and
0: why?
4: That's why the
0: what
4: BJP.
0: What is the factor?
4: Because their performance. Manage the issue is the performance, whether they perform as per the expectations or not. People believe that they have not done.

0: No, but this is a slightly tricky debate, and I slightly disagree with what Akhilesh is saying. You know, because this is where the narrative building comes into play. You say naraazgi against the MLA. Arey, bhai, MLA kehta hai ki jo zila adhikari meri baat hi nahi sunta. Again, to go back, main ek brahman hu. मेरा जिलाधिकारी, मेरा डीएम एक ठाकुर है, वो मेरे फोन पे ही नहीं आता. मेरा अगर काम ही नहीं होगा, इफ आई कैन नॉट सेटिस्फाई माय कंस्टिट्यूएंसी मेंबर्स बिकॉज द चीफ, ही इज रिपोर्टिंग टू द चीफ मिनिस्टर, यू होल्ड मी अकाउंटेबल. अरे द चीफ मिनिस्टर इज अ फेस, व्हाई शुड द अकाउंटेबिलिटी.
1: सर्वे तो कह रहे कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एंटी इनकम मिलती नहीं है.
0: दैट इज अ नैरेटिव.
2: दैट सर्वे विल बी द बेसिस.
0: बट एग्जैक्ट, सो सर्वे इज अ बेसिस. यू वोंट लेट हरीश द्विवेदी, देयर आर मल्टीपल शलभमणि त्रिपाठी, देयर आर मल्टीपल, you know, Brahmin MLA, so to say, who will tell you what is the problem of real politics in the state of UP. I completely, by the way, diss this argument that please hold the MLA MP responsible.
1: As you said last time, T-series ka music baj raha hai Uttar Pradesh.
0: Ek face-driven party hai, face-driven state hai, unki koi
2: BJP ka Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, caste is very important. Caste is going to play a decisive role as far as the election results are concerned. So, be it MLA, be it MP, whatever, you know, ultimately what matters is the caste.
1: Yeah.
2: So they have to come down
1: and
2: to that.
1: And that is going to be very important.
2: So if you are replacing a Brahman, if you are replacing a Brahman MLA with another Brahman candidate, so how does it matter? It won't affect the
1: BJP.
3: BJP ka standard SOP hai, ticket 30%, 40% katte hi hain. Last year bhi,
1: chutney karte rahe.
3: Last time bhi, 2022 mein, टिकट कटने थे,
4: 122 टिकट काटे थे 2022 में.
3: कटने से बस इसलिए गए कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी के कई नेता जो है समाजवादी पार्टी में चले गए. स्वामी प्रसाद मौर्य, राम सिंह सैनी, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, मिनिस्टर्स, वो जो पैनिक हुआ उसमें कईयों के टिकट बच गए. इस बार अगर कोई पैनिक हो जाए तो अलग बात है.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: state of mind with a cola spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cola spa at home.
1: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
3: अरे मेरे राजा.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़.

0: 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं। इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: And before we slip into a short break, let's take you through these visuals that just came in, where the BRICS summit briefly turned into something of a Prime Minister Modi photo frenzy as delegates from across the bloc rushed to get a picture with the Prime Minister. What was meant to be a formal diplomatic gathering, suddenly, at the energy of a red carpet moment, phones out, cameras clicking and delegates making a beeline for the Prime Minister. Beyond the light-hearted optics, the scene offered a striking snapshot of the personal diplomacy and political visibility surrounding India's BRICS presidency, with Prime Minister Modi emerging as one of the most sought-after figures at the summit. We leave you with this video.
2: One minute for a minute.
3: You sound like the order.
2: Thank you.

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेस बना रहा है।

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिज

0: Hello and welcome. I'm Padmaja Joshi, and you're watching the show where we discuss pure politics. Because as you all well know, nothing a politician does is without meaning or intent. So to dissect each statement, each move, and to help understand which way the winds are blowing in the country right now, joining us today on Politics with Padmaja, we have senior journalist Sameer Chaugankar, Vinod Agnihotri. We have Bhupen Chaubey here with us, and NDTV's managing editor Akhilesh Sharma has always been a fellow traveler on this journey. But we are going to start right away by talking about the biggest story of the day, arguably, and it is the BRICS summit, which is being hosted by India. Let's get started with that biggest story of the day. The BRICS summit is right now being held in the national capital in Delhi. The importance of this meeting is not lost on anyone, given that it's taking place even as two wars are raging, one in the Middle East and the other between Russia and Ukraine. It will require India to strike a fine balance between Russia, China, Iran, America. But even before the summit started, the BJP's Naraz Phoophaji campaign seemed to get even more fuel. Why? Because of P. Chidambaram, who questioned the tangible benefits that New Delhi had gained from such events. The funny thing, though, is that even as the BJP latched on to this statement by P. Chidambaram and other such leaders like Udit Raj within the Congress, these people, these congressmen, were contradicted by leaders within their own party. Listen in.
1: I don't think the last two or three BRICS summits have resulted in tangible benefits or tangible results. In fact, we are part of BRICS, we are part of SCO, we are part of G20, we are part of Quad. What benefits we are getting out of that, I can't see in the last two or three summits.
2: How many BRICS ke member hain? Summit bhi India mein ho raha hai. अभी तक ब्रिक्स से हमें इंडिया को क्या फायदा मिला, बल्कि हमारा जो पार्टिसिपेटरी अमाउंट ब्रिक्स वो ब्लॉक पड़ा हुआ है।
3: Well, it's a important event. All the 11 countries will be present at a time when the world is churning and is in trouble. There is a conflict and contradiction in the world. So it gives us an opportunity, India an opportunity to show leadership, to ensure that the contradictions and conflict are reduced to the minimum.
4: Well, first of all, we're providing an important platform for the Global South. You know, the Global South is over 100 countries, but here, this grouping, just the 11 BRICS countries, represents a majority of the world's population and 41% of global GDP. It's not a small matter. It's something that has to be taken very seriously by the rest of the world. This is a matter of great prestige for us. It shows a certain diplomatic convening power, which has value in and of itself on the global stage.
0: Well, so there are Naraz Phoophajis, there are plenty of supportive Phoophajis as well. But let me start by asking you, Akhilesh ji, what does the government hope to take away? I mean, the world's eyes are on India, on the BRICS summit in Delhi. But what are the government's hopes from this?
5: See, first thing is that India's priority is to have energy security. Mm. For that purpose, the many bilaterals which are having, Prime Minister Narendra Modi himself is going to have 12 bilaterals in this BRICS summit. So that's very important. Be it Iran, be it China, be it Russia. So in all those talks, the energy security is going to be figured prominently. Second point is about India's leadership in the world. India is also looking for a global leadership in the global south. So for that purpose, this platforms like BRICS, they serve a big purpose. Mm. And also you see that India is not making this BRICS as an anti-Western platform. India is preventing that. Because India is working as a bridge between the global north and the global south. Mm. But now coming to that, what Mr. Chidambaram has said, see, it's very interesting. In 2012, when there was a UPA government led by Dr. Manmohan Singh, at that point of time, the UPA hosted BRICS. India chaired BRICS summit that point of time. In fact, there was a talk that why not remove I from India and make it Indonesia. Instead of India, let's make it Indonesia. Mm. And somebody actually used the term fragile five, that India's economy is so fragile that it is among the fragile five economies of the world. Mm. Today, look at what has happened. India is part of G20. We successfully hosted G20, where we made an example that we are doing, what we're doing is inclusive, that we made African Union a member of G20. also in the BRICS summit, we have made it sure that the African countries are also part of the BRICS summit. So that is one point. Second point is that India is now one of the fastest growing economies in the world.
0: Yeah.
5: So from 2012, from Fragile 5, now we are the fastest growing economy. So this is a huge difference. What we achieve energy security, we work, we get whatever is beneficial for our own people, and we work for the self-interest. This is what all the other countries are doing.
0: You know, since you're talking about the Fragile Five, I think it's a good time to bring in what the spokesperson for the IMF said, and it couldn't have come at a worse time for these so-called Naraz Phufajis, because almost on cue, the IMF says that yes, India has performed way beyond even what we expected. Let's listen in.
6: This upward surprise was driven by stronger than expected activity in the services sector and also in exports. And I think what we would say is the outturn also underscores the resilience of the Indian economy despite the energy price shock. And it also means that, you know, as we've been saying for quite some time, that India does remain a key growth engine for the world.
0: Of the economy and a key growth engine, as compared to what was being said, that this data, this 7.6, is just being made up by India. How do you read the criticism coming from somebody who's not inexperienced, somebody like P. Chidambaram, saying what's the tangible benefit? What do you make of this group?
7: You know, it's not the first time that the Congress has questioned the foreign policy moves of the Prime Minister. And bear in mind, Chidambaram is perhaps only taking a cue from what Rahul Gandhi did most recently at a Congress party plenary function.
0: The Indian economy is dead.
7: Where he was only talking about how hugglomacy has replaced diplomacy. But that was Rahul Gandhi, and that's the story of the Congress party.
0: So you're saying that this is actually a party line that he is taking up?
7: You know, Padmaja, within the Congress party, what is absolutely crystal clear to me, the more I interact with members from the opposition, the more I realize that if you have to remain relevant, and B, if you have to have a trajectory of upward growth, particularly within the Congress party, you need to constantly keep criticizing, abusing the Prime Minister personally. Now, here's the Prime Minister. He's used words like Vishwaguru, that India should be the Vishwaguru. He's openly spoken about how India needs to, you know, maybe become a bigger force on international platforms. I mean, I think that this BRICS summit could not have come at a better time, at a more opportune time, not just for India, but for the entire world. There is the US-Iran war, and what do you have? You have the UAE and Iran, both the premiers are here. There is strong possibility of some kind of a joint statement coming in from the both sides. Akhilesh used an interesting term, that this is not anti-West, this platform. I think the way to look at BRICS, and that is the message which I think should go to all our friends in the Congress party, that don't convert it into an anti-West or pro, you know, some kind of a platform. It's a non-West platform, not necessarily an anti-West platform, because, you know, Modi, for all you know, will pick up the phone and speak to the US president. Tomorrow, Xi Jinping is coming here. Putin is already here. India wants
0: to
7: explore
0: its options. But it's all very well to say that you want to progress in the Congress, you want to take a certain line, you have to take a certain line, but it goes against what people can clearly see, right? Okay, Vinod ji, puri duniya ko dikh raha hai. In fact, I just heard somebody remark the other day that, look, you have got the Iranian president in India at a time when that war is still raging. You know, the Prime Minister was in Israel, and then you had the war which started against Iran. And now you've got the Iranian president in India. So India is really managing to maintain that balance. And then somebody as seasoned as Mr. Chidambaram says, अरे मिल क्या रहा है वहाँ पे लोगों को तो दिख रहा है ना फिर ये जो बीजेपी नाराज फूफा जी की बात करती है लोगों को लगने लगता है ये सच ही होगा
8: नहीं मैं उदित राज के स्टेटमेंट से सरप्राइज नहीं हूँ आई एम सरप्राइज विद चिदम्बरम से स्टेटमेंट चिदम्बरम इज वेरी सीरियस पॉलिटिशियन और उनका ये है कि मुझे लग रहा था कि चिदम्बरम थोड़ा अपनी बात को उनका देयर इज नो टेंजेबल बेनिफिट फॉर इंडिया तो कुछ उसको एक्सप्लेन करते ना खाली एक सेंटेंस उछालने से काम नहीं चलता है देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वेदर इट इज़ G7 या सॉरी G20 ब्रिक्स क्वाड SCO वो जो है कहीं ना कहीं भारत को जो का जो महत्व है दुनिया में उसको और बढ़ाते हैं आगे क्योंकि जब उस प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं शी जिनपिंग है पुतिन है और वहाँ जैसा कि यूएई और ईरान दोनों के हेड ऑफ स्टेट जो है आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उससे निकलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इज ए हम रीजनल पावर तो हैं ही यहाँ पर, चाइना के बाद अगर कोई पावर है इस साउथ एशिया में तो इंडिया है, तो अगर ब्रिक्स में हम नहीं होंगे तो हम कहाँ होंगे।
0: कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर चिदम्बरम रेज बेट कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि पहले उन्होंने खुद ही बोल दिया मैं हूँ दिमागी नक्सल, अब वो नाराज फूफा जी के भी मोल्ड में आके फिट हो गए। नहीं,
8: अब बेचारे फूफा जी को इतना बदनाम मत करिए कि जो भी नाराज हो वो फूफा, अच्छे फूफा भी होते हैं, देखा नहीं आपने शशि थरूर और
0: Although I'm not really sure शशि थरूर will appreciate being called a फूफा जी, he is you know eternally young।
8: मामा जी कह दीजिए कि मामा ज्यादा सपोर्ट करते हैं।
0: भैया ऐसे से कॉल मी भैया,
8: भैया कह दीजिए।
5: इस बात की शिकायत तो नहीं कि नैम के आप कोई जिक्र नहीं करता, नॉन अलाइन मूवमेंट का कोई सार्क की बात नहीं करता?
8: नैम तो देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट का जिक्र इसलिए नहीं होता है, सार्क को लेकर के मेरा रिजर्वेशन जरूर है कि सार्क को खत्म करके इस सरकार ने ठीक नहीं किया। सार्क आपको जो है साउथ एशिया में आपका अपना बेबी था, दैट वाज योर बेबी, जिसको आपने रिलेवेंट कर दिया। जैसे एस सी ओ चाइना का बेबी है, ब्रिक्स भी एक तरह से चाइना का बेबी बन गया है, जिसको हमारी प्रेजेंस से थोड़ा रुका हुआ है। अदरवाइज अगर इंडिया उसमें नहीं हो तो जैसा इंडोनेशिया वाली बात कर रहे थे वो चाइना के बेबी हो जाता।
0: कर क्यों रहे हैं? इसका कुछ तो वजह होगा।
8: इसलिए सार्क को तो जिंदा करना चाहिए था, लेकिन क्यों बिमस्टेक भी बनाया।
5: बट मुझे इफ यू रिकॉल व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एआई समिट, यू नो द यूथ कांग्रेस वर्कर्स दे एक्चुअली हाफ नेकेड दे प्रोटेस्टेड, दैट दे डिड नॉट सेंड अ गुड सिग्नल। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, द चिदंबरम स्टेटमेंट।
0: सो यू आर सेइंग दैट दिस इज बीइंग डन डेलिबरेटली टू काइंड ऑफ
5: दिस इज व्हाट द बीजेपी इज
0: और थ्रो अ क्लाउड ओवर।
7: फॉरगेट व्हाट द बीजेपी इज सेइंग, जस्ट लुक एट ऑल द सिग्नलिंग व्हिच इज कमिंग
0: द ऑप्टिक्स
7: रिपीटेडली फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस बिलीव्स When the Americans suddenly hit upon us with tariff war, what was the response? Oh, dekho Modi, you know, he was going and he was
0: Narendra surrender,
7: ye sab. So all this is a part and parcel of what the Congress believes is a valid and just strategy for itself to consistently keep the focus against the Prime Minister. Bear in mind, you know, I mean, a few months from now, you'll have important elections coming in various important states. अब आप मुझे एक बात बताइए, कल को अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है ब्रिक्स की जिसमें आप ईरान और यूएई के बीच में वाकई अगर मान लीजिए इफ देयर इज सम काइंड ऑफ अ जॉइंट स्टेटमेंट व्हिच कम्स अप एंड आई अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी सम स्टेटमेंट व्हिच विल कम अप, व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पांस विल वी देन हैव फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी? विल दे से नहीं ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है? सो देन यू विल एंड अप एक्सेप्टिंग द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिक्स। नो, राइट नाउ यू आर सेइंग ये तो पैसे की बर्बादी है, इट्स
0: मार्केट नॉट अ बिग डील, क्या है शोशे बाजी, ये तो स्ट्रेटजी है समझिए।
8: डू यू थिंक दैट देयर विल बी अ जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन विद द यूएस?
7: नो, आई एम सेइंग देयर विल बी अ ब्रिक्स स्टेटमेंट। नो,
8: ब्रिक्स स्टेटमेंट,
7: ब्रिक्स ये डिक्लेरेशन आएगी
8: बिकॉज देयर इज नो बायलैटरल टॉक्स बिटवीन यूएई एंड ईरान,
7: बट विद इन दैट ब्रिक्स डिक्लेरेशन देयर इज बाउंड टू बी सम रेफरेंस।
0: नो, एंड दे मैनेज टू गेट एवरीवन इन द सेम रूम, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग डील। द फैक्ट दैट विद इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स यू गॉट Mr. Modi meeting Mr. Putin, पहले वो SCO में मिले, now they're meeting here again. That counts for something. You can't say it's a waste of time और कुछ मिल नहीं रहा है।
9: मुझे लगता है पद्मजा कांग्रेस को उससे बचना चाहिए था, चिदंबरम के जो बयान आया जिस तरीके से, देखिए G20 जब हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, तब कांग्रेस ने कहा था कि अभी लोकसभा चुनाव है तो उसको भारतीय जनता पार्टी अपने PR के रूप में इस इवेंट को इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से G20 को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। अब फिर अब ब्रिक्स को लेकर आप चिदंबरम जिस तरीके से बयान दे रहे हैं या कांग्रेस का रिएक्शन जिस तरीके से लेकर आ रहा है, देखिए तो देश के अंदर एक इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और ये कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो ही नहीं, तो मुझे लगता है कि अतिथि देव भव की भावना तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि हमारे देश में जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो आप इस समय इस ब्रिक्स के बारे में कोई निगेटिव बातें ना बोले। आपको सरकार से प्रश्न पूछना है, ब्रिक्स से आपको क्या हासिल हुआ, उसके बाद आप लोकसभा का सत्र आता है बाकी आता था पूछ सकते हो, ब्रिक्स शुरू होने के पहले आप इस तरीके से निगेटिव स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि इससे
8: अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार नहीं होती कोई और सरकार तो भी करते हैं।
0: नहीं नहीं, आप टैंजिबल बेनिफिट छोड़िए, देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग दैट व्हाई इज दे बैरिकेडिंग, कि ट्रैफिक इज अ मेस, द सिटी इज अ नाइटमेयर, व्हाई हैव यू डन दिस,
7: दीस आर यू नो कंप्लीटली फ्रिवोलस स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय ट्विटर आरजी।
0: नो नो, बट देयर इज अ प्रॉपर नैरेटिव सेइंग दैट यू नो इंडिया सिंपली कैन नॉट हैंडल सच लार्ज इवेंट्स।
7: आई थिंक यू नो पद्मजा, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई मिस्टर चिदंबरम मे हैव डिसाइडेड टू जंप इनटू दिस एंटायर डिबेट इज बिकॉज़ देयर इज अ व्यू which is held by a section of economists in our country, led by the venerable Mr. Sujit Balla himself, who's written today, that India should not be a part of this BRICS, forget BRICS, and start looking towards Europe and start looking towards the US. I'm now, here's Mr. Balla, and I remember last time I was with you guys, I was saying that, oh, you know, here's Mr. Balla's position, we all know. Now, you can say, take it with a pinch of salt, you can say that Mr. Balla is not getting anything from this government, so maybe he's saying this. If Mr. Chidambaram had a valid economic criticism to say that India is not gaining anything by becoming a member of BRICS, I'd have taken that. We could have, you know, gotten together to debate that. But to say कि दिस इज मार्केटिंग, व्हाट आर यू गेटिंग, नथिंग, यू नो, बैरिकेडिंग दिस दैट. आई थिंक दैट्स मिसिंग वुड फॉर द ट्रीज.
0: इट सीम्स लाइक व्हाट मिस्टर जेटली यूज्ड टू कॉल द कंपल्सिव क्रिटिक्स, पीपल हु वांट टू फाइंड द प्रॉब्लम. बट आई वांट टू आस्क यू अबाउट इट,
8: डिफरेंट टेक. देखिए, देयर इज अ ट्रम्प साहब जो है ना, ही इज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिक्स. एंटी वेस्ट ब्रिक्स नहीं है, बट ट्रम्प ने खुद को एंटी ब्रिक्स बना लिया है. तो ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते कि ब्रिक्स सक्सेस हो. और ये अमेरिकन नैरेटिव है कि इंडिया ब्रिक्स से बाहर हो जाए और ये हो जाए. मुझे लगता है इंडिया को रहना चाहिए ब्रिक्स में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक कर रहे हैं अगर ब्रिक्स में वो सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर के.
0: Are you saying Mr. Chidambaram is echoing the Trump narrative?
8: I can't.
7: Or being influenced by the American narrative.
8: ये अमेरिकन नैरेटिव है. अब वो चिदम्बरम करें या कोई करे, मतलब ये या भल्ला जी करें या मैं करूंगा कोई, ये टोटल इंटरनेशनली अमेरिकन नैरेटिव है. दे आर अगेंस्ट ब्रिक्स टोटली. ट्रंप के तो स्टेटमेंट आप देखिए ना, उन्होंने कहा था कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा.
0: सो व्हील्स विद इन व्हील्स. आई डोंट नो व्हाट द मोटिवेशन इज, बट वेल, यू हर्ड द क्रिटिसिज्म, बट आई रियली डू वांट टू आस्क, बिकॉज यू हैव कवर्ड, यू नो, इवेंट्स, सच इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. अखिलेश जी, आर देयर सच ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल?
5: ऑफ कोर्स,
0: इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
5: देखिए, 11 देशों के तो प्रमुख आ रहे हैं और 10 अन्य देश, 21 देशों के तो ये हैं. यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, दुनिया भर के और ऑर्गेनाइजेशन से उनके हेड आ रहे हैं यहाँ पर. एक साथ आप इतने लोगों को अपने देश में बुला रहे हो, आप उनमें से जानते हैं कई तो बहुत ज़्यादा, जिनको कि सिक्योरिटी का थ्रेट है, चाहे प्रेसिडेंट पुतिन हो, चाहे प्रेसिडेंट जिनपिंग हो,
8: ईरान के जो
5: ईरान के हैं, उनको थ्रेट है. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए होस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल होस्ट, दैट यू शुड इंश्योर 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर देम.
0: बट लेट्स शिफ्ट फोकस नाउ टू अ स्टेट दैट्स मेकिंग नॉइज quite disproportionate to its size. I am talking about Punjab. And there seems to be a flurry of activity in the state in the recent past, and I wonder if it's because of a leadership reshuffle that has taken place. This week, the Congress appointed its new general secretaries in charge of several states. Randeep Singh Surjewala got additional charge of Gujarat. He's already in charge of Karnataka. Bhupesh Baghel, he was shifted from Punjab to Assam. And Sachin Pilot got charge of this high value state. Since then, there seems to be a new energy in the party unit in Punjab, and even the warring factions, no pun intended, seem oddly friendly with each other. So let me start by asking you, Bhupen Chaubey, because last week you had said the cat among the pigeons by saying that Amrinder Singh Raja Warring is going to go. Warring is still there, but Mr. Baghel has gone. Now what's going to happen?
7: Well, I got 50% right of that story. But we don't know. We don't know what will happen on that front yet. I mean, I'm not saying that Warring will continue till the elections. Sachin Pilot has now made a statement that there is not going to be any chief ministerial face and that Rahul Gandhi is going to be the person. I think one of the reasons why, the question to raise perhaps, is why was Bhupesh Baghel removed? Yeah. And why has Sachin Pilot been brought back, been brought into Punjab? I think Mr. Baghel, in the eyes of the Delhi Congress leadership, was becoming a person who was getting too close to a certain faction of the Congress party in the state of Punjab, and therefore was unable to, you know, to manage all the friction and carry forward all the leaders. Now, this is not to say that just because Sachin Pilot has now been made the General Secretary in charge of the state of Punjab, all the warring factions will suddenly, you know, let go of their guard. Sukhjinder Randhawa has worked in the state of Rajasthan as a key observer along with Sachin Pilot.
0: Pratap Singh famously called that meeting for which no one went, neither no one Mr. Gehlot right? went, nor
7: exactly.
0: Mr. Pilot went.
7: Yeah, so that's one.
0: And he was state in charge. Yeah? Yes.
7: Pratap Singh Bajwa, the present leader of opposition, who went with the bouquet to give to Sachin Pilot, has been tweeting away that Sachin is my younger brother. Mm-hmm. Now, if Sachin is a younger brother to everybody, then I don't know how this younger brother is going to really be able to crack the whip. Mm. The problem before the Congress in Punjab still remains what it was pre-Sachin, which is, are all these various leaders whose names I'm taking, are all these leaders going to work together as one cohesive unit under Sachin Pilot? Hmm. Or is the story still the
0: same?
7: बताइए
0: समीर जी, अंदर की खबर क्या है? क्योंकि बड़ी अजीब सी चीज हुई. One day after Sachin Pilot was made the General Secretary in charge, Sukhjinder Singh Randhawa, जो सबसे ज्यादा कह रहे थे कि भाई अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को हटाओ, उन्होंने एक रिपोर्टर को बोला, हमने तो कभी बोला ही नहीं था, हमने कहाँ बोला था, मैंने कभी बोला कि पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज कीजिए.
9: देखिए, सचिन पायलट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे. वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनने के सोच रहे थे और 28 में तो राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान का एक बड़ा वर्ग जो खुश है कि सचिन पायलट को पंजाब भेज दिया गया है. तो कम से कम वो अब प्रदेश अध्यक्ष की अभी फिलहाल दौड़ में नहीं है. और डोडासरा जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुश हो रहे होंगे कि थोड़ा मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा. अब सचिन पायलट इसके पहले छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे, छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम क्या आया, अब उनको वहाँ भेजा गया, और वहाँ रंधावा जो है पंजाब के वो राजस्थान के प्रभारी थे, तो उनका जो व्यवहार राजस्थान के अंदर रहा था सचिन पायलट के साथ, अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से वो काम कर रहे थे, अब सचिन पायलट उन्हीं के राज्य में प्रभारी बनकर गए हैं जहाँ से रंधावा आते हैं, तो अब सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे रंधावा चन्नी
0: पर उनके रिश्ते कैसे हैं, ये सारे जो डिफरेंट कैंप्स हैं उनके साथ?
9: नहीं ठीक है, देखिए सचिन पायलट
0: बहुत सुलह करा पाएंगे, वो नहीं करा पाएंगे,
9: नहीं करा लेंगे सचिन पायलट, और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को भेजने के पहले चन्नी से बात हुई थी, चन्नी से बात हुई उसके बाद सचिन पायलट को भेजा गया, और चन्नी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है सचिन पायलट के लिए कि वेलकम करने के लिए, बता रहा है कि चन्नी उससे बहुत खुश है आने से। भूपेश बघेल वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि भूपेश बघेल पंजाब के अंदर कंटिन्यू करें, और मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान को लगा हुआ कि अगर भूपेश बघेल रहेंगे तो चुनाव बहुत बुरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब होगा,
0: क्योंकि यहाँ पे सच में एक ऑप्शन है कांग्रेस का जो उनके जीतने की चांसेस हैं। लड़ाई खत्म हो गई या इन कांग्रेस नेवर से नेवर,
8: लड़ाई
0: यू नेवर नो व्हेन द फैक्शनलिज्म इज गोना कम,
8: कभी होती नहीं है नेताओं में। ये कह सकते हैं कि फिलहाल जैसे सीज फायर वाली स्थिति बन गई है सचिन के जाने से, उसका रीजन है कि सचिन की जो छवि, जो भी भूपेन ने भी कहा कि भूपेश बघेल अलाइन हो गए थे एक सेक्शन के साथ, और यही प्रॉब्लम हो गई थी पिछले चुनाव में जब हरीश रावत थे उनके साथ भी यही हो गया था, ये दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर जो है ये अलाइन हो गए थे। सचिन के साथ क्या है कि सचिन एक तो राजस्थान से हैं, मतलब यूपी से हैं ओरिजिनली, बट राजस्थान में काम करा, तो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर्स मिलते हैं, वो राजस्थान की तासीर को बेहतर समझते हैं, सॉरी पंजाब की तासीर को बेहतर समझते हैं भूपेश बघेल की तुलना में। फिर चूंकि राजेश पायलट के बेटे हैं, उनकी एक लेगेसी है, तो पंजाब के कई सारे लीडर्स एक ज़माने में राजेश पायलट से ओबलाइज भी रहे हैं, राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो रिश्ता भी सचिन का है, तो सचिन के साथ जो एक पर्सनल टच है लीडर्स का वो भूपेश बघेल के साथ नहीं था। तो ये सब चीज़ों को देख के, और यंग है, न्यूट्रल है, और सचिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को करीब लाने में ज़्यादा कामयाब होंगे, बेहतर अब।
0: और एक एक कोइंसिडेंस भी है दैट अब राजस्थान का एक फेस ऑफ होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि सतीश पुनिया है बीजेपी के प्रभारी और सचिन पायलट राजस्थान से हैं,
8: जाट और एक गुजर,
0: जाट वर्सेस गुजर होने वाला है।
9: 2022 में भी दोनों राजस्थान से प्रभारी थे, हरीश चौधरी पहले ये थे अपने, जिसका आपने नाम लिया अभी, हरीश रावत थे, उसके बाद उनके हरीश चौधरी बने राजस्थान से थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से 2022 में थे, तो 2022 में भी दोनों राजस्थान के जो नेता थे वो पंजाब के प्रभारी रहे।
0: इंटरेस्टिंग, बिफोर वी pop the champagne and think that all is going to be well within the Congress, let me just quickly tell our viewers that just when they were giving conciliatory statements, you had a delegation of the Congress go and meet the governor about the suicide of a man, of a Dalit man, Gulzar. And in that delegation that met the governor, there was only Charanjit Singh Channi, Sukhjinder Singh Randhawa, and none from the warring camp were over there. That meeting happened yesterday. So if the Congress is experiencing this burst of energy of late in Punjab, one party that has been at the receiving end, and an unfortunate receiving end, is the ruling Aam Aadmi Party. Now, what happened? It all started with the suicide by a Dalit laborer in the Sangrur district of Punjab. This man, Gulzar, had questioned Punjab's finance minister Harpal Cheema about the drug problem in the state during a public program. He basically went there with a black flag. Gulzar then said that his son is a victim of chitta, nasha, the drug problem that exists. And in this public meeting in front of Harpal Cheema, Gulzar said that it's still being sold openly and my son is an addict. Now, allegedly after this, he faced political pressure. He was picked up by the sarpanch. He was asked to issue an apology. And he says that he was tortured to an extent that he consumed poison. He had these sulfas tablets. A few days later, he died, but not before he left this dying declaration.
10: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ?
11: ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ।
10: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
11: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਪਾਸ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ।
10: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ
11: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
0: Now, to make matters worse, Gulzar's family says that their father's body was forcibly cremated under police protection, and this has given fresh impetus to the attack on the Bhagwant Mann government by both the Congress and the BJP.
12: ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਦਬਕੇ ਮਰਵਾਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FM ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
0: Akhilesh, this has all the ingredients that can prove potent against the Aam Aadmi Party.
9: Absolutely.
0: It's a Dalit laborer, it's in the Chief Minister's own constituency, drugs are involved. What do you see will happen? Will Harpal Cheema have to go?
9: Well, it's a serious indictment of the Aam Aadmi Party government, because remember in 2022 when they came to power, that time the famous movie Udda Punjab, and then this drugs problem, and Aam Aadmi Party's promises that, you know, they will completely remove it from the roots. The drug problem will be completely uprooted from Punjab. That was the election promise made by the Aam Aadmi Party. But after 5 years, what has happened? A person commits suicide because his son is taking drugs, and that too in the constituency of the Chief Minister.
0: And he takes the name of the minister.
9: Finance Minister, and take the name of that. And also, because what has happened is that he is Dalit also.
0: Yeah.
9: So all the factors, you know, they are going against Aam Aadmi Party. And remember now, not only the Congress Party, but also the BJP. BJP is going to take out a big yatra against the drugs. BJP President Nitin Naveen will launch this yatra. Home Minister Amit Shah will also be part of that yatra. So BJP is going to make it a big issue, and that will actually hurt the Aam Aadmi Party in the upcoming assembly elections.
0: But who do you see gaining more from this, Bhupen? Is it going to be the BJP or the Congress? Because the Congress is front-footing it, saying that this is a Dalit laborer. You know, you had delegations of the Congress going and meeting the governor. BJP yesterday tried to go to this village, but they said they were stopped. Who will gain more from
7: That's
0: this?
7: That's why I think Sachin Pilot's appointment at this stage becomes that much critical. Because this is an opportunity. This is a God-sent opportunity, I would say. No pun intended, to the Congress Party. The political semantics of Gulzar Singh's death are such that it can shift hugely the very significant and critical Dalit vote base in the state of Punjab. We all have seen how Rahul Gandhi consistently in different parts of the country has been trying to position himself as the harbinger and the savior of Dalits in the state. The Aam Aadmi Party, I'm in agreement with Akhilesh, is clearly on the back foot in the state of Punjab. They have all kinds of problems. Arvind Kejriwal, I think a few weeks back, was openly celebrating the launch of what they called Pila Punjab. You know, which was a bulldozer, which was
0: entire Yudh Nasha Virudh,
7: Yudh
0: and
7: Nasha
0: so many
7: Virudh.
0: Of these buildings were brought down by supposed drug peddlers.
7: It was a critical part of their election campaign at the time of the 2022 Punjab Assembly elections. Clearly, they have not succeeded in dealing
0: with
7: it.
0: So then why aren't they dismissing Harpal Cheema? Why are they digging in their heels?
7: Well, if anything, they have
0: here a man has taken his name in his dying declaration.
7: They have brought Mr. Cheema in their highest decision-making body.
0: Which is
7: also a messaging which is going. Now, you know, I mean, you could well argue that maybe Mr. Kejriwal is taking a leaf from the Prime Minister's book, that it's not that the BJP also, you know, gets rid of a leader just because some controversy has happened. Mr. Kejriwal at this stage has a very clear, and I would say a reduced playbook to play with. Harpal Cheema in that sense plays a very, very critical role. He's a state finance minister. He's, well, clearly blessed with the ability to bring in resources within the party as well. To let go of him or to remove him would have ended up, you know, exposing the Aam Aadmi Party a little more at this stage. And I don't think Kejriwal wants to take that chance at this stage.
0: In fact, if anything, they have gone on the offensive. Because now Sameer Ji has said here, and Congress is comparing it to the Congress.
7: Look,
0: and the optics are the same. Because there was also a Dalit child here, here is a Dalit laborer. You show those pictures where you've got an entire police cordon around where that pyre is being lit. तो इससे मतलब strategy क्या है आम आदमी पार्टी के इसमें?
9: नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है चुनाव के पहले इस तरीके से घटना और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगना। देखिए 2022 के चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था ना कि भाई कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल इतने समय शासन किया पंजाब के अंदर और ड्रग्स की समस्या इनके इसमें बड़ी मजीठिया पे जिस तरीके से आरोप लगाया था कि भाई ड्रग्स की डील करते हैं लेकर अकाली दल के नेता के ऊपर और केजरीवाल ने कहा था हम आएंगे तो हम ड्रग्स फ्री पंजाब को बनाने वाले हैं। 5 साल बाद आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपको इतना प्रचंड मैंडेट मिला 92 सीट्स आप उसमें जीत जाते हो उसके बाद 5 साल बाद भी आप ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि ड्रग्स को लेकर आपने क्या काम किया।

0: जब अब ये कहा जाता है कि मतलब जो राघव चड्ढा ने भी कहा कि राशन की दुकानों पर ड्रग्स की बातें हो रही है, स्कूल कॉलेजेस के प्रेमाइसिस के आसपास ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा इस मामले को लेकर आपने किया गया? आपको जनता के बीच चुनाव में इस बात को लेकर जाना होगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, कहेगी कि भाई पंजाब की जनता से कहेगी आपने कांग्रेस को इतने लंबे समय देखा, आपने आम आदमी पार्टी को पूरा इतना प्रचंड बहुमत देखा, एक बार अब हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम इस मामले को देखना चाहते हैं।
1: दिस इज एन इशू दैट आम आदमी पार्टी इज वेरी टची about. A few days ago, Harbhajan Singh had tweeted that video of a man who was out of his senses, and then the Aam Aadmi Party came back and said ki bari ye Rajasthan ka video hai, aap isko misrepresent kar rahe hain.
0: Abhi Akhilesh jo bata rahe the ki dress ko lekar BJP yatra nikalne wali, jo Pathankot se 18th September se shuru hoke 30 September tak karne wali hai, Nitin Naveen us yatra ko nikalenge, to mujhe lagta hai ki Bharatiya Janata Party bhi is pe dress ke pe badhegi, aur jaise Amit Shah ji ne kaha tha ki bhai desh ko naxalwad se mukt kiya hai, ab nasha mukt karna hai, to us slogan ko lekar mujhe lagta hai Punjab mein Bharatiya Janata Party jayegi. Congress ke samne samasya hai ki bhai matlab Congress koshish karegi ki दलित जो मर गया है तो उसकी सिंपति ले, लेकिन आपका ही दलित लीडर आपसे नाराज है चन्नी, वो भी तो एक दलित लीडर है जो आपकी पार्टी से नाराज चल रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपको ये है कि आप चन्नी को बचा के रखो तब तक, क्या चन्नी रहने वाले तब तक?
1: But to be fair, at least on this issue, Mr. Channi is speaking in the language of the Congress party.
2: But what he is saying is very important. चन्नी तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? He is making a very important point. So not only about him, but also about Captain Amrinder Singh.
0: बिल्कुल.
2: Because there's a lot of talk ki whether he is going to come back to Congress or not.
1: Exactly. And I want to come to that. But you know, what does this do to the position of the Chief Minister? That is going to be interesting, because when we are talking about Captain Amrinder Singh, that is the other buzz. Captain Amrinder Singh has been now with the BJP. He formed a different party, then he merged his party into the BJP. I think what, for around 2 years? So he's now merged with the BJP. But when the Prime Minister coined the phrase of Dimagi Naxal, Amrinder Singh wrote an op-ed in a newspaper where he said that who exactly is a Dimagi Naxal? That definition needs to be made very clear, otherwise you're just going to silence dissent. Now, what made things even more suspicious is an AMA, Ask Me Anything, that Rahul Gandhi did just a couple of months ago, and in that he spoke of Uncle Amrinder. I want you to listen in to what Captain Saab has said about the Congress and Rahul Gandhi has said about Captain Uncle in just the last few months.
3: Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him, he's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder.
4: Rahul ne mere naam ki man ki ta. Unu be unu edda jata si jata main jaan dea usnu. But bacha. So naturally, all the feelings are ready in here. Apne ka.
1: बताइए विनोद जी, अंकल अमरिंदर आ रहे हैं वापस? हेलो तो बोल ही दिया राहुल जी
2: का। अंकल इसमें अंकल का मतलब अंकल फूफा तो नहीं है?
1: I have no idea. That's a good question. जब वो आएंगे तो पूछेंगे, अगले एमए में पूछेगा उनसे।
5: फूफा वो बीजेपी के लिए हो जाएंगे ना?
1: फिर वो बीजेपी से नाराज फूफा होंगे।
5: हाँ, नाराज फूफा होंगे। एक्चुअली देखिए, अमरिंदर सिंह की जो रिलेशनशिप गांधी फैमिली से रही है, बहुत ही क्लोज फैमिली। ही वॉज ओनली लीडर इन द कांग्रेस पार्टी हु कॉल्ड सोनिया बाई हर फर्स्ट नेम, सोनिया, नॉट सोनिया जी, नॉट सोनिया गांधी, बिकॉज हिज रिलेशनशिप विद राजीव गांधी वॉज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो अमरिंदर सिंह, और जब अमरिंदर सिंह का जब को हटाया गया है ना, तो लास्ट जब सोनिया गांधी से उन्होंने बात की और सोनिया ने कहा कि नाउ राहुल विल डिसाइड, राहुल से बात करिए, उसके बाद ही वो नाराज होकर गए और फिर पार्टी बनाई। ऊपर वो तो अब अगर दोबारा वो, और बीजेपी में उनको कोई अहमियत मिल नहीं रही है, क्योंकि जो बीजेपी ने जिन लोगों को, अब रवनीत सिंह बिट्टू,
1: और वो कुछ फायदा भी नहीं हुआ है,
5: फायदा भी नहीं हुआ,
1: ढिल्लो
5: सारे लोग, रवनीत बिट्टू, ढिल्लो, सारे कांग्रेस के लोग हैं जो इनको बीजेपी ने आगे किया हुआ।
1: इनफैक्ट जब केवल सिंह ढिल्लो को बनाया गया था, तो अमरिंदर सिंह सेड कि मेरे को तो पूछा ही नहीं, जबकि वो मेरे राइट हैंड मैन या मेरे से क्लोज हुआ करते थे।
5: और अमरिंदर सिंह ही नहीं, सुनील झाकड़ भी इस समय आइसोलेटेड है। अगर अमरिंदर सिंह जाते हैं तो क्या सुनील झाकड़ भी चले जाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक साथ है।
1: सर, आपने बोला ना कि बीजेपी में किसको अहमियत मिल रही है, हु इज नाउ गेटिंग अटेंशन, सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ समबडी हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, ही हैज बीन सीन इन द कंपनी ऑफ तरुण चुग, हैज बीन अटेंडिंग मीटिंग्स इन दिल्ली, ही हैड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। आई वांट टू प्ले आउट व्हाट राघव चड्ढा सेड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द आम आदमी पार्टी, लिसन।
6: मेरा सवाल है और मेरे वोट का सवाल है, आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत हो गई है, उन्हें रात को सपने में मैं भूत बनकर आता हूं, वो दिन रात राघव चड्ढा राघव चड्ढा राघव चड्ढा राघव चड्ढा करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की हालत उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जिसे बॉयफ्रेंड डंप कर कर आगे निकल गया है, मूव ऑन कर गया है जिंदगी में, लेकिन आज वो अभी भी मेरे इश्क में, मेरे प्यार में पागल है।
1: समीर जी क्या चल रहा है राघव चड्ढा के साथ?
0: देखिए अमरिंदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अमरिंदर के साथ गठबंधन किया था 2022 के चुनाव में, तो अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि मैं आपके साथ गठबंधन करूंगा तो कम से कम 10 सीटें मैं जीतूंगा। 27 सीटें अमरिंदर चुनाव लड़ते थे, 26 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। टोटल 85,000 वोट अमरिंदर को मिले थे, 0.55% वोट मिले थे। अमरिंदर खुद पटियाला शहरी सीट से चुनाव हार गए थे, सिर्फ 26,000 वोट अमरिंदर को मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अमरिंदर को लाके कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। फिर उन्होंने पार्टी मर्ज की, उनको लगा कि पार्टी शायद राज्यसभा भेजेगी, उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी, जब केवल सिंह कुछ जिम्मेदारी देगी। लोकसभा में उनकी वाइफ थर्ड सीट पर पटियाला में लड़ी, तो थर्ड नंबर पर उनकी वाइफ चुनाव पर चली गई। तो पार्टी को लगा कि भाई अमरिंदर के पास अब मतलब कोई बड़ा ग्राउंड बचा नहीं इसके अंदर। तो उसके बाद जब केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, तो अमरिंदर सिंह इस बात से नाराज थे कि मुझसे पूछा भी नहीं गया किसको अध्यक्ष बनाना, डायरेक्ट उनको बना दिया गया। कहा जा रहा है कि बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ जो अभी अध्यक्ष थे केवल सिंह ढिल्लों के पहले, वो भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, हो सकता है कि वो भी वापस कांग्रेस में लौट कर, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब अमरिंदर अब 84-85 के हो गए, अब उनको लग रहा है कि भाई अब बीजेपी में कुछ मिलना नहीं है, कांग्रेस में जाऊंगा तो कम से कम ये है कि लोकसभा में वाइफ चुनाव लड़के जीत जाएगी या कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि अमरिंदर का जाना चाहता है तो चले जाए।
5: सचिन की रिलेशनशिप भी अमरिंदर से वही है जो राहुल गांधी की अंकल वाली।
1: अच्छा,
5: राजेश पायलट एंड अमरिंदर सिंह दे वर क्लोज फ्रेंड्स, तो सचिन
1: तो वो कॉन्डुइट रहेंगे वो अंकल को वापस घर वापसी करने के लिए।
5: वो भी एक भूमिका
1: है। बट राघव चड्ढा को तो बताइए, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरी अपनी नस काटने के लिए तैयार है, मेरे प्यार में पागल हो रही है अखिलेश जी।
2: ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी चिंता करते हैं कि राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं। फोन भी आते हैं, पूछते भी हैं कि राघव चड्ढा को कोई भूमिका मिल रही है पार्टी में, आते हैं पूछते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: अब उसमें दिक्कत ये है कि क्या बताएं। अब अभी तक तो फिलहाल तो बीजेपी ने कोई स्पष्ट किया नहीं। संदीप पाठक को जरूर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राघव चड्ढा को मुझे लगता है कि संभाल के रखा हुआ है, लास्ट मोमेंट पे कुछ कार्ड निकालेंगे, कुछ करेंगे। देखिए राघव चड्ढा आप जानते हैं कि पंजाब के प्रभारी, संदीप पाठक ने, इन दोनों ने मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी हमारी पार्टी सत्ता में लाने के लिए। तो ये है घर के भेदी, तो घर के भेदी लंका ढाए ये कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को इसी के लिए संभाल के रखा है बीजेपी ने, आखिरी मौके पे कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल जरूर करेगी।
1: ओके,
7: जस्ट ऑन राघव चड्ढा, सिंस यू सी पंजाब में ना पद्मजा दिस बिजनेस ऑफ गर्लफ्रेंड एंड स्कॉच एंड बटर चिकन इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पंजाबी पॉलिटिक्स। बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ लास्ट असेंबली इलेक्शन इन पंजाब, कुमार विश्वास नोटेड पोएट had made a very serious allegation against the Aam Aadmi Party.
5: Against the Kejriwal.
7: Against Mr. Kejriwal, that Mr. Kejriwal was allegedly on the same side as terrorists and you know, Canadians who were supporting Khalistani movement in Punjab. Now, in 2022, Raghav Chadha was the critical force, so to say, for the Aam Aadmi Party in the state of Punjab. I would be very eager at this stage now that Raghav is on the other side. Will we get to the bottom of the allegation which was made by Kumar Vishwas in 2022?
1: Yeah.
7: Will Raghav Chadha now come clean and say that yes, I mean, if any such meeting happened, then sure Raghav Chadha would have known. Let's see whether Raghav.
1: No, that's a very important point, like, because such things should not just be made fodder for elections. If such charges are made, one should get to the bottom of it, yeah, and name and shame those people and in fact arrest them. Since we are on the issue of Punjab, some respite that the Aam Aadmi Party government got was from the latest activists on the block. CJP's Saurav Das was in Punjab yesterday. He didn't tell anyone. So, Meechi, किसी ने कोई पता था कि ऐसे ये औचक निरीक्षण करने वाले हैं वहाँ पे? वो बकायदा गए. He went to some schools of eminence and then he declared that he was quite impressed by it also and that he also met the education minister. Education minister उनसे मिलने को भी तैयार हो गए.
0: Saurav Das को पंजाब में सारे स्कूल में रामराज्य नजर आया कि सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ कोई खराब
1: नहीं, नहीं। उन्होंने कहा कि
0: झारखंड को लेकर भी उन्होंने कहा
1: हम बीजेपी राज्यों में जाते हैं हमारी पिटाई होती है, यहाँ पे पीपल कम एंड
0: नहीं, राजस्थान का सिर्फ राजस्थान में हुआ, बाकी कहीं पिटाई नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी गए थे, बीजेपी रूल है वहाँ, कोई ऐसा मिसबे नहीं हुआ। सिर्फ राजस्थान का जिक्र कर रहे होंगे शायद, राजस्थान में जिस तरह से मिसबे हुआ था, लेकिन वो झारखंड का भी जिक्र कर रहे थे कि झारखंड में गए वहाँ पर अच्छे स्कूल है, पंजाब में गए वहाँ के बहुत अच्छे स्कूल है। अब Saurav Das, अभिजीत दिपके और उनके बारे का बैकग्राउंड तो बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि किससे जुड़े रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो जाएंगे नहीं बोलने की भाई स्कूल है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसके अंदर कि कम से कम 1500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे जहाँ पे अभी टॉयलेट सीरी बने, और कम से कम 1200 स्कूल ऐसे जहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है। और अभी जो पैसा दिया था भगवंत मान ने स्कूल एजुकेशन के लिए, वो डाइवर्ट दूसरी जगह कर दिया, ये भी आरोप वहाँ पर लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी चीज़ों भी बात होनी चाहिए, ठीक है, अब वो भी जाएंगे और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में जब जाएंगे।
1: I want to show you some very interesting responses. You know, Saurav Das tweeted about

0: this inspection that he did, and within 1 hour, 4:37 yesterday he tweeted about this inspection, 5:29 Arvind Kejriwal had thanked him for his inspection and assured him that we are going to act on all of your suggestions. And within another 30 minutes, the education minister, Manish Sisodia, and by the way, he had tagged only Harjot Benz. He hadn't tagged Arvind Kejriwal, he hadn't tagged Manish Sisodia, but everyone. So that's a responsive government.
1: Responsive government to hai, lekin the relationship between CJP and Aam Aadmi Party is well known.
0: Is it?
1: भाई वो तो पुराने एक्टिविस्ट हैं आम आदमी पार्टी के,
0: बट वो कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, अब हम इंडिपेंडेंट हैं।
1: तो मायके से प्रेम तो रहता है ना, ससुराल जाने के बाद भी। तो इसलिए खाली फूफा की बात नहीं होगी, मायके की बात भी होगी कि भाई जिस पार्टी से आप अपने अलग पार्टी बनाए, दूसरी पार्टी तो नहीं गए आप। राघव चड्ढा को का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, वो खुद ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो रिश्ता ये है, उन्होंने अपना घर बसा लिया बीजेपी बना करके। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अभिजीत दीप के काम कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, आशुतोष रंका कर चुके हैं, सौरभ दास कर चुके हैं, तो उनके लिए आम आदमी पार्टी तो उनकी पुरानी पार्टी है ना, तो वहां जा करके वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है।
2: इसका एक दूसरा आयाम भी
1: है, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी उनकी कितनी रहेगी?
2: हाँ, exactly.
1: अगर ये इंपॉर्टेंट चीज
0: नो, एंड बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट द बीजेपी व्हिच इज क्वेश्चनिंग नाउ, इवन द कांग्रेस इज सेइंग कि भाई हजार ऐसी लिस्ट है, आप हमारे साथ चाहिए। हाँ. आपने किसको, यू डोंट इन्फॉर्म एनीवन, यू डिड नॉट टेल एनीवन यू आर गोइंग टू बी इन पंजाब।
3: मनीष तिवारी, नाउ लुक एट व्हाट मनीष तिवारी सेड जस्ट लास्ट वीक व्हाइल स्पीकिंग एट अ फंक्शन, ही सेड द आइडियोलॉजी ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस इज द सेम। नाउ हियर इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर whose name has not figured, you know, in these potential chief ministerial candidates in the state of Punjab. Chakkar kya hota hai, that in any state, you know, you go to any state in this country, whether it's UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, you can, as I keep saying, you can look at statistics the way you want to. There are certain schools which will be working, there are certain schools which will not be working. Vinodji is right that CJP, if anybody tells me that CJP is not conjoined with the Aam Aadmi Party, you know, then I'm not going to buy that statement. It's very clear. So whatever Mr. Kejriwal has responded to Saurabh Das, if you remember that, why did the CJP delegation actually go to Punjab? Because there was an interaction which was taking place, if I remember correctly, in Maharashtra between Abhijit Deepke and some reporters, where they asked, aap kya sirf BJP rule states mein jayenge? To unhone kaha ki nahi, hum sab states mein jayenge, hum to Aam Aadmi Party ki state mein jayenge.
0: Baqaida tweet karke bola hai that we have gone to opposition rule states, and look how all the teachers are accompanying Saurabh Das and that lady who's used to be a lawyer.
4: Behar kiske
0: saath kiya? Sab saath mein, wahan pe Madhu Bangarappa jaake Karnataka mein unse mil rahe hain, jo ki education minister hain, yahan pe idhar ke education minister.
4: Aur डिनर किसके साथ कर रहे हो रहा
0: कुश्ती करेंगे डिनर भी था
4: आम आदमी पार्टी के एमएलएस के साथ रात को डिनर हो रहा है इनका
2: अगर ये नूरा कुश्ती होगी ना तो इससे जो क्रेडिबिलिटी है उस पे असर पड़ेगा
0: नो एंड नाउ पीपल आर ओपनली लुक आई मीन इट्स एंटायरली अप टू देम दे आर वेल विद इन देयर राइट्स
1: सोशल ऑडिट होना चाहिए लेकिन सोशल ऑडिट किसका होगा जहां से कंप्लेंट आएगी स्कूल गड़बड़ है अब आप मान लीजिए गए और बहुत अच्छा स्कूल है आपने देख के सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है उससे नहीं बनता जहाँ बच्चे वाकई परेशान हैं
0: करेक्ट
1: जहाँ आप देखेंगे बिजली नहीं है सड़क पे वो टीचर नहीं जा रहे हैं इमारतें नहीं ठीक है वहाँ जाके सोशल ऑडिट
0: करिए पीपल इन झारखंड पीपल इन कर्नाटका विल बी लुकिंग एट दीस ट्वीट्स एंड दे विल नो व्हाट द रियलिटी इज बट सिंस वी आर टॉकिंग हमने मायके की भी बात कर ली ससुराल की भी बात कर ली फूफा की भी बात कर ली तो अब बुआ की बात करना तो जरूरी है वी हैव टू गो टू द next relation and the very very naraz bua right now in Indian politics is Mayawati. Now Akash Anand, last time when we had spoken, three times he had been thrown out of his chief coordinator post. Then finally over the delay in tweeting, in retweeting his bua's post, finally not only has he been removed from his post, his father-in-law has been made to retire. Now what is this relationship? Akash Anand was believed to be the inheritor of Mayawati's legacy. Now is it going to be his brother, Akhilesh ji? Is Akash Anand out of favor? And is Ishan Anand now, and wo bhi kahin Manchester ya kahin se padh ke aaye hain shayad?
2: Nahin, abhi toh lagi raha hai ki unhi ko shayad promote kar rahi hai, kyunki jis tarah se unka naam bhi liya unhone. To, lekin ek bada interesting ye hai ki mujhe kabhi kisi ne kaha hai ki aap 2-3 din rukiye, is story mein bhi kuch aur bhi badi cheeze honi hai, kuch bada dhamaka bhi hoga. To mujhe lagta hai ki some big development is going to happen.
0: Like?
2: I don't know what. Because I asked them,
0: क्या ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे?
2: वो अखिलेश यादव ने कहा कि आ जाए तो आ जाए स्वागत है।
0: उन्होंने ये नहीं कहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा वो आएंगे?
4: तो ले लेंगे।
0: तुम लेके आओगे? तो हम ज्वाइन करा लेंगे।
1: नहीं, लेकिन मायावती के ट्वीट में जो आजाद था, कि मैंने उनको आजाद कर दिया, तो आजाद का क्या मतलब?
0: It's interesting आपने mention किया, दिखा दीजिए जरा सा वो tweet. Let's show you the tweet that Mayawati put out. It's point number 9. She writes very very long, very expressive tweets. But point number 9 said that इसलिए पार्टी के लोगों से यही बेहतर लगता है, etc. etc. He said उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से free in brackets आजाद. चंद्रशेखर आजाद समीर जी,
4: देखिए मुझे मायावती ऐसे मतलब संकेतों में बात नहीं करती. मायावती जो है बहुत स्पष्ट बोलती है, चाहे ट्वीट हो चाहे बात करे. अगर वो ये कह सकती है कि भई आपने ट्वीट करने में देरी कर दी, चीज़ों को लेकर स्पष्ट कह सकती है, तो वो ऐसे संकेतों में बात नहीं करेगी. अगर मायावती को लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसका कोई गठबंधन हो रहा है या उसके पास जाने की है, तो मायावती सीधे उस बात का जिक्र करती. मायावती संकेतों में ब्रैकेट
0: में आया, मतलब पहले एक लाइन में उन्होंने कहा कि मैं उनको मुक्त करती हूं,
1: इसलिए किया है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर के उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती. जो बड़ा नेता होता है, इंदिरा गांधी कभी किसी अपने का नाम नहीं लेती थी, मोदी जी भी ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, मायावती भी नहीं करती, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में आजाद रखा है.
4: और मुझे लगता है
0: कि उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम बनाया है,
3: वो तो है, वो तो है. बट यू नो पद्मजा, लुक एट इट दिस वे, जस्ट सी व्हाट डज इट टेल यू अबाउट दिस वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड सो ऑफन इन आवर कंट्री ओवर द लास्ट 10 इयर्स, डिनेस्टी, फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स, राइट? अखिलेश यादव इन अ लाइटर वेन जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक वाज पॉइंटिंग आउट दैट हमारी पार्टी क्यों नहीं टूटी, समाजवादी पार्टी, एंड ही सेड हमारी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारे परिवार के दो लोग हैं सांसद बने हुए हैं. नाउ हियर इज
0: माय, क्योंकि सारे सांसद हमारी
3: पार्टी में, बट हियर इज मायावती,
0: हमारी परिवार से, सॉरी,
3: मायावती अ लीडर हुज बीन of you know multi-term chief minister, full majority government between 2007-2012, if after all these years Bhenji has not been able to put in place a cogent power transfer or passing the baton structure, then the responsibility completely lies with her. You speak to people in her party at the lowest level, they will tell you that you know we have full faith in her, but the point is we don't know which side she's on. You know, we've forgotten what had happened in the Jaunpur Lok Sabha ticket distribution when it was taking place in 2024. She was literally waiting for the BJP to declare its candidate so that she could declare her own candidate. In this kind of an environment, I think Bhenji is losing the last ounce of credibility that she'd had. I, for one, I'm disappointed because, you know, for the longest time, I thought that this would be her last election. When she could have really made a dent for herself. If with this story playing out, the way it's playing out, and to just conclude Akhilesh's point, the way it's playing out, what will happen 2 to 3 days down the line, for all you know, I mean, you know, is Akash going to be back? No. Is Akash going to be in Chandrasekhar Azad's party? Well, perhaps, who knows? Is there going to be some alliance between the BSP and or the BJP and the Congress? The chance of that at this point is no. Mayawati is losing the cards which she's always held closest to her chest to strike the best political
0: deal. And the question is, is this under somebody's pressure? What is the logic? I just want to add one more point, because since we're talking about Uttar Pradesh, there's information with NDTV that close to one third of the sitting MLAs are now going to lose their ticket. That's the information that we have. So there is in the BJP. So the sitting MLAs of the BJP are at least 30% of them. तो टिकट बटेंगे तो बहुत सारों के टिकट कटेंगे भी उसमें. दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. हां समीर जी,
4: मायावती को लेकर जिक्र कर देता हूं कि देखिए मायावती कैसी राजनीति करती है और पार्टी को कितने मतलब बुरी कंडीशन में लेकर चली गई कि आज 36 साल के बाद पार्टी इस स्थिति में आ गई है कि आपका एक एमएलए नहीं है, राज्यसभा में आपका एक सांसद बस जो बचा हुआ अगले मंथ रिटायर हो रहे हैं, रामजी सुमन, लोकसभा में आपका एक सांसद नहीं है, नहीं नहीं समाजवादी पार्टी,
3: समाजवादी पार्टी, रामजी गौतम,
4: रामजी गौतम को भेजा था वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास लोकसभा में भी सांसद नहीं है, प्रदेश विधानसभा में आपका एक सांसद नहीं है, प्रदेश विधायक आपका एक नहीं है, जो विधान परिषद में थे आपके भीमराव अंबेडकर जो थे वो रिटायर हो गए, तो आज अगले महीने के बाद मायावती का किसी भी सदन में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में एक भी मेंबर नहीं रहेगा. पहली बार 36 इयर्स में ऐसा आने वाला है. तो ये पार्टी जो 2007 के इलेक्शन में 206 सीटें जीतती है 30% वोट के साथ, वो आज एक भी एमएलए नहीं और 9-10% के वोट पर आ गई है
0: सिंगल डिजिट में
4: पूरी. और मायावती ने क्या किया 2022 के चुनाव के बाद? न मायावती रैली करती है, न 2024 का चुनाव मायावती ने लड़ा, न आकाश आनंद को चुनाव लड़ने दिया, न मायावती इस तैयारी में है कि किसी लोगों को लीडर्स को खड़े करे. जितने मायावती के लीडर्स से बाबर सिंह कुशवाहा हो, नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो, सब लोग पार्टी छोड़कर चले गए.
0: दैट लीव्स द फील्ड वाइड ओपन फॉर पार्टीज लाइक द कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी टू ट्राई एंड वू दिस मैसिव एंड डिसाइसिव दलित वोट. बट आई वांट टू गिव द फाइनल वर्ड टू अखिलेश जी. One third of the sitting BJP MLAs are going to lose their ticket?
2: Yes.
0: Why?
2: Massive. But this is what happening. This is what happening in the other BJP ruled states.
3: The SOP.
2: When you have.
0: But in Uttar Pradesh in particular, is there greater than usual anti-incumbency
2: of
0: against the
2: is.
0: Local MLAs?
2: You mean there's a lot of anti-incumbency against the MLAs, and that's why the BJP.
0: What is the factor?
2: Because their performance. Manage the issue is the performance, whether they perform as per the

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेस बना रहा है।

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमी

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमी